0: 呀，高喊阿达尼玛，能多那呀，能多那不达拉达卓呀，好咱俩差别，把娃子呀，拉美达塞那个婆达玛呀，托婆美达塞那把娃们呀，俺们都当为达拉达卓呀。
1: लगे के सब जब यहाँ को रे ले चंबे के दूजी जब वो लगो चुषा ना चुंट जब वो दो दे चुंट मैं तो तो लेते रहते फुटबॉल की मैच की दही जाना चोरो सिक्के दम ना चोरो लवा ना ला क्या दिन ला लो पाम लो किने उच्च पर्दो लो किने उच्च किसी ना ला मजा ला पर्दो मातों तो सा मा ने जब मातों तो सा मा चुसो दे को ला चंबे रे मुझे हम भी समय रे मुंगो पांगे चोरो रे टूटे रे ला गोबी उगे ला के ही क्यों बेगे तू ला चुषा ना चुंट जब वो सर बाती गे यहाँ डंडे के ने चोरो ना तो एबा सर की डंडे चूला गोबी जब

다 용달랑으로 저든지 얘기여와 제대면자 다 다달랑한소 니서 하대바데 처리세비다 자 선지바다 당주바 당주바 되니시 되니는 가서 베지 다리지비 용이야나 땡지 단지 자 야나 숨어다베 차대바 와야 다 디라 선다니지 야나다 부디 처리세나 가서다 서들랑으로 다 있어야지 숨여와 다 있으니까 민장다 대마에 바게다 샤치기 민라서 봐 어디서 다차 어 아니 간제진 저기메 어 된제고 꼭은 가서다 다 있어야 지시는데 디미디서 선단이 짜와다 디연라 다브르지르 비거니 다이 어 대선데 처리스나 아니 베지 토모 많이 바게 다지지 봐 야나 토모 많이 바 다지지 비기 요나 땡치 오야 아 대선 차디 봐 내리지 차디 리스 되네 다 공디시 비게 다지지 봐 야나 다지 있어야 되게 민거 남랑라 간제지 요 바래 있어 봐이나 민거 남랑라 간제지 요 바래 있어나 아 아니 가서 요나라 자리 봐 아니 다주리바스 그냥 카이카이 때라고 하는 거 다주리바스야 근데 이게 내소도 싫으잖아 시당가 괜히 민기 나나나 붙잡는 거 단 네가서 사실 시작이지 처리해야 되는 시당 안소 아 다 뒤전에 있잖아 아 아니 배지 지차리니 계속 맞춰용들이 진이 치앙 가고 나 아니 말서 다리바다 체마리바다 조리바다 소아리바다 나데리바스니 말서 아 나장대로 되게 농경 말서 다리바스니 Shetan kalanga to Jaripate, Jagaji Jaripate, little Guanin. Ata, Jakalabada, Jatendrabada, Jayanje, Atene, Japan Balasuba, Katsinyans, Panova de Chibate, Sote, Ani, Jagaji Jaripate. Tinted Major Jaripa Hina, Katsinyans, Panova de Chibi, Jagaji Jaripa Conara, going Niba Yorkas, Tony Numaris, the Jensenchery City, Kondi Hibana, Jaripata, Datisipatin, the Tiji Ming Narachatipat. Tinted Datisipa Hina. अने जगाजी दर्जी भी में निभा में पाते नहीं जारी पाये ना जगाजी जारी पाये में निभाया हमारे कच्चे यहाँ से भी निभाया हमारे बेहत अब लंच में पाये ना संदात आसन देशों दे पेज जारी पारे आ कच्चे यहाँ से दाबते जगाजी जारी पारे ताते माये बाग मानो तो जाई आ ते माये बाग सोपो को सोई लासो बाते सो ला अने थो माये बाग रानसो जो के जारी पाता रानसो जो के दर्जी पाये बारे तीन दिल जारी पास या गोवा चमची ते इंची मिंची ते मानो जगाजी अनि कच्चे यहाँ से जारी पाते सो ला कोगी भी निभाए हमारे इस तीन दिल जारी पास या ते कोशिता का शुमिंग रावे छाती पारे दर्जी पास या ते ने तेजी रे ने मानो ता हिगी जी ने ने गा रावे ये छांदू ने कसे ला शोधन रावे जी जी या पाई ना दर्जी पास या दिल संजीन ना के साजा के ते कायां रूम ये ला गोवा शिव की शावा तेरे चिला दर्जी पास या रे इस ते इंदी ला मानो रुआ मी रे ला रंग साजा के ते दिल ये पारु पाला दर्जी पास शिव का अनि दर्जी जी सोचे आदि चले जाना ना कैसा था ये के तेंजी ने रेस वो ना दाचे जी बाद दाचे से आदि कहने जिल कोगी बारे ऐसे दिला दाचे जी बाद दाचे से आंधे गंजों रुआ मीर जी के रंग साइज़ के तें पारु पला दाचे पर शेबी को कैसा था ये के येरो तें इधर कैसा था ये के को अनि जोरो कैसा था ये के को दाचे तां के चिन्य तां कोरंग के तुम माइंब निसोर ते सो ते अनि शोधोंग को थोने इन तें ला पाया बेग यूनु तेजी ते सो ला Dikaja ta dar dra donju kuwan de shibik dati ribas. Yana dati sedil, o tela kuwan ingo kundus. Tene sumba de chiri sana wana nganso pela ani tomo mayen baga dati yana dati ribas kare sabayina zawa sanju bada tanju ni di yana de shibik dai. Tisanda tata nganso gu ta peki kichit peshi don shibik ani dati ribik yona o tenji de teres. Ani hiba shiji de chiri sedil, वो ना दी का जी दाचे जी बादा दाचे से आते ला तुझे मिंग नाना कहाँ योरे से भाई ना अने जारी बादा दाचे जी बा जाजो जी बा वो देशो देखे रे जना अने तुझे मिंग नाना रेस वो तुझे ये बाय ये ता जारी बा से दिले इंची मिंची जगा जी कला बादा तेंदर बादा यंजे मादा पान बाला सुबा तुझे की जगा जी जारी बा यंजर कोगी मरेस वो दी दर ना तो पहले या रंग थोम माई बा जारी बा योरेस ये या या की यो ना या थोम माई बा जारी बा दाचे जी बा मैं बातें रे मासू तीसरा मामू, वो तेरे जीवन दे पारे, वो ता देशों दे चले से दिला, दाटे पाता, दाटे रिपा, ता अने दाटे रिपे के मिंग नाना, वो ते देशों दे, ता नी का संगर सो, नेगां रा बची, वो ता तेरे जी चाली हो पारे, तेरे इंदर ता, तारे के छोटे नी के, अने ता नांदे, रा बोते, ता चाय चाने, ही जा पाएंगे ना, जी, तारे के ता, दे दाटे के फंसे नी ma hibi kasla zo de ti de gan de gan de ji toni hi hi ba yin ba o de nga so ma da de toni ngo ji ji yo re ani ni de toni a de ni ting de ge da